0: accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Kings and queens, wars and peace, history's long, it never ceases. Dates and facts we must recall, we'll remember them all. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam said, Allah has 99 names, 100 less one, and he who memorized them all by heart will enter paradise. To count something means to know it by heart.

0: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: لبيك الله. السلام عليكم. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Balance effort with rest. Don't push yourself too hard and remember to take breaks when you need them. Resting properly will help you keep going and not to feel too exhausted. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Rhythm of reading, melody of notes, mindful practice, every quote. From dusk to dawn, let your knowledge bloom. Top scores await, there's plenty of room. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
13: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: अपने आप से सोचना ना स्पेशली शो में आने के बारे में आप मत अपने आप से मैं लोगों से कहता हूँ मेहरबानी करो मेरे बारे में और जो मैं कह रहा हूँ ना उसके बारे में अपने आप से सोचना बंद कर दें, बजाय इसके कि उस पर ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ।
13: ठीक है सर जी,
0: ठीक है।
13: हाँ जी, और लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक यू, लास्ट टाइम मैंने मैं माई थी, मुझे इनका नाम नहीं मालूम
0: जी,
13: लाइक आई रियली वांट टू थैंक हर फॉर,
0: हां वो डॉक्टर साहब ने आपके बारे में कहा था।
13: हाँ जी, बिकॉज उस दिन मैं काफी इमोशनल था, पहले तो मैं अपने आप को संभाला और जैसे ही उन्होंने बोला मेरे फिर आंसू निकल पड़े। मैं कहा यार बड़ी मुश्किल से,
0: ये सारी जो बातें होती है ना ये कंटेनर की सारी बात, लेकिन देखें आपको ने अपने तरीके से एक्सप्रेशन दिया, उन्होंने भी आके दिया, आपने इन चीजों को से कतई नजर होके बाहर निकल के आपने इन तमाम चीजों, हमें प्योर लोग चाहिए, प्योर लोग ऐसे ही होते हैं, प्योर इमोशन भी ऐसा ही होता है, इसको सिर्फ हमने इस एनर्जी को हार्नेस करना है और इसकी, मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, वरना यही इमोशन आपको खा जाएंगे और अगर आप इसको केयरफुली और समझ के इमोशंस को यूज़ करेंगे तो ये आपको वहाँ पहुँचा देंगे जो रब हमसे चाहता है। तो हैंडल करने की सिचुएशन है सर, उसमें कोई वीकनेस नहीं, कोई भी वीकनेस नहीं होती, वरना मैं कितनी दफ़ा तलत साहब के बारे में शो कर रहा था, मेरी आवाज़ कितनी दफ़ा रिंद गई, कितनी दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितनी दफ़ा मैं लोगों से बात करते हुए जब इतने प्यार और इज्जत करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं या मेरी आवाज़ गुलगीर सी हो जाती है, पता लग जाता है आप लोगों को, नज़म पढ़ते हुए भी कभी हो जाती है, इसमें कोई मैं कमज़ोरी में ये के अंदर नहीं है, ये तमाम चीज़ें ये एक्सप्रेशन है इंसान होने के नाते हमारे, ठीक है। नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबान हमारे साथ काफ़ी देर से, रेडियो आज यू रहा
16: जी। अस्सलाम
0: जी, जी वालेकुम सलाम, सॉरी लंबा हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट था।
16: मैं भाई हीरा सिंह को दो पॉइंट्स देना चाहूंगी बातों बातों से। एक तो ये, आप जब हमें हमसे डिस्कस करते हैं तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पॉइंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस सब कुछ बता रहे होते हैं, जिसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं, एंड देन वी फिगर आउट के हाउ आई कैन अप्लाई सर्टन थिंग्स एंड हाउ कैन आई अवॉइड फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो ये है कि वो शख्स जिसने वो जुमला कह दिया भाई से, तो दैट मीन्स कि वो किस फेज में था, किस फैमिली से आया है, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसका बैकग्राउंड क्या था और वो किस मसाइल मुश्किल से गुजर रहा है, सो वो भी हमें सोचना होता है। जब हम एक दफा ये सोच लेते हैं तो हमारा ये सारा जो एक थॉट है वो हम उसको रोक के फिर डिफरेंट एंगल पे चल पड़ते हैं। दूसरा ये कि हम पैटर्न्स देखते हैं अपने भी और दूसरों के। मैंने लाइफ में जब अपने पैटर्न्स और दूसरों के देखने शुरू किए तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हुई कि व्हाई सर्टेन पीपल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सेम पैटर्न सेम थिंग फ्रॉम चाइल्डहुड अप टिल नाउ। तो मैं अपने पैटर्न्स, देन आई वांट टू ब्रेक द बैड पैटर्न्स एंड ट्राई टू कीप द गुड पैटर्न्स, ताकि मैं उन पैटर्न्स पे मेरा जहन उस पाथ पे चलता रहे जो मुझे फायदा दे रहे। तो वो चीजें हमें, हम खुद सीखते हैं और लाइफ के महल में इस मोड़ तक रोजाना ही सीखते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा ये कि जिस वक्त हमें, मैं ये कोशिश मैंने की है कि गुस्सा जब आए तो मैं उस लम्हे के लिए दूर हट जाऊं, चुप कर जाऊं, या मैं थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो के फिर मैं जो डिफरेंट एंगल सोचती हूँ मुझे बहुत कुछ समझ आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सब कहते हैं ना पानी पी के और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो एंगल बिल्कुल ही डिफरेंट फिर समझ में आने लगता है। तो हम सब करते हैं, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। यस, आपने इसको पॉइंट बहुत अच्छा दिया कि अपने आप को बीट अप करने से आपने उस शख्स को खत्म कर दिया है जो कुछ कर गुजरता। सो वी ऑल कैन डू बेटर इन आवर लाइफ बाय आई थिंक फॉलोइंग दीस।
0: हमें अपने आप से ना, अपनी ही जो हमने जंजीरें खुद बांधी हुई है ना अपने पैरों में और अपनी सोच में, उससे अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे अपने आप को मारना, गलतियां हो जाती हैं, ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, बट उसके बाद हम
16: बड़ी बड़ी
0: आगे निकलना,
16: छोटी भी और बड़ी भी।
0: और छोटी बातों पे स्पेशली बड़ी रिएक्शन नहीं देने चाहिए। जो काम मैं कहता हूँ ना सुई से हो सकता है उसमें गोली नहीं मारनी चाहिए।
16: हुक्म मेरा। आज का सवाल के माशरे में, जैसे मैं एक जहन में पाकिस्तानी माशरे को रखती हूँ, वहाँ पे पढ़ना लिखना लिटरेसी, वहाँ पे कुछ सोच की जो एक खराबी है या एक जिंदगी का तरीका है। अब वहाँ पे जितने भी लोअर तबका है, लोअर तबके से मुराद के उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उनके बच्चे भी ज्यादा हैं। अब जब वो बच्चे बड़े होंगे वो और मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होंगे, माशरे में उस तरह की मेजॉरिटी आ जाएगी। और जब हम जैसे लोग, यानी कि जो थोड़े से समझ रखते हैं थोड़ी सी, उनके मुकाबले पे, क्योंकि हमें शायद हालात अच्छे मिले हैं, जीन्स अच्छी मिली हैं, एनवायरनमेंट अच्छा तरह मिला है। तो जब हम बहुत सारे आटे में नमक की तरह हम हो जाएंगे और वो मेजोरिटी हो जाएगी, तो वहां पे क्लैशेस बहुत होंगे, वहां समझ के क्लैशेस, वहां पे रिश्तों के क्लैशेस, वहां इमोशन के, तो वहां हारमोनी खत्म होगी। तो बहुत जरूरी है कि एक माशरे को, एक अच्छे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा लोग उस लेवल पे सोचना शुरू करेंगे, जैसे उस दिन हमने कलेक्टिव थिंकिंग पे भी बात की थी। तो वहां पे कितना, मुझे आज दुनिया में एजुकेशन तो बहुत है लेकिन जहालत भी बहुत है एजुकेशन के साथ। तो जब तक मेंटल एजुकेशन हम और मेंटल डीपर थिंकिंग और ब्रॉडर विजन हम अपने बच्चों में नहीं पैदा करेंगे, अपनी नस्लों में, अपने तराफ में, तो फिर हम उस जहालत से ही लड़ते रहेंगे, उसमें ही सारी एनर्जी जाया हो जाएंगी जो आज हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, लीडर्स में भी और दूसरी चीजों में भी, कि जो उस जहालत के पैटर्न से हटना ही नहीं चाह रहे और दूसरा पाथ ही नहीं लेना चाह रहे।
0: बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है बिल्कुल। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, कोई और भी हमारे साथ। रेडियो आजादी रौंदी,
17: अस्सलाम वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम सलाम, कहाँ रह गए थे, लोगों ने हमारी मत मार दी है पूछ पूछ के, सजीला जी का क्या हाल है, उनकी सेहत ठीक है, वो कहाँ गायब हो गई है। मैं तो आपकी, मैं तो ये शो इसलिए करता हूँ कि सजीला जी के जवाब देता फिर उन लोगों को।
17: आप, मैं कहीं नहीं थी, यही थी आजाद, बस काम के लिए थोड़ा मुझे ट्रैवल करना था।
0: अच्छा, मेरे तो एक लेडी ने मुझे कहा मेरा तो वो लेडी क्रश है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा डॉक्टर साहब।
17: वही सलामत थी आजाद। और आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है?
0: ठीक है, सब अल्लाह करो, काम चलाए। और पार्टियां इतनी की ना हमने थैंक्सगिविंग में, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देते हैं, तो उसमें के रेस्टोरेंट में हीटर, उधर से हीटर लगा हुआ था, उधर से ठंडी हवाएं आ रही थी, दोनों जब मिक्स हुई तो उन साहब को तो कुछ नहीं हुआ, मेहरबानों को, मुझे। मैं लेट गया जाके अगले दिन घर में फिर।
17: तो अब कैसी, अब
0: आज हमने नहीं वादा, हमने मंडे वेंसडे का वादा किया हुआ है, तो चाहे जो मर्जी हो जाता हमने पहुंचना था।
17: जबरदस्त आजाद वाला, माशाल्लाह।
0: पर हीरा सिंह जी ने आके तो चार चांद लगा दिए शो को।
17: आजाद वाला वो अभी मैंने पता है अभी सुनना शुरू किया उनका, सिर्फ एंड का थोड़ा सा मैंने सुना। इंशाल्लाह ताला ये शो मैं दोबारा कल सुनूंगी।
0: बहुत काम की बातें उन्होंने की हैं और बहुत ही काम की चीजें जो हम सीख सकते हैं, हम तमाम लोग वही अपनी जिंदगी में रोज हमारे साथ हो रहा है बट बता नहीं पाते, और जब बता नहीं पाते तो फिर हम एंगल नहीं दे पाते उन चीजों के बारे में।
17: नहीं आजाद अल हीरा सिंह जी तो माशाल्लाह से इतने इतने स्वीट हैं, तो जब भी आपने इतनी, उनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
0: हाँ, बस इसीलिए वो कम कम आते हैं कि उनके, उनको लगता है कि उसकी वजह से इतना कुछ हो जाता है, मैं एक दफा सिखा के फिर उसके बाद महीना गायब हो जाते हूँ। उनको नहीं पता कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन रोज का कम है, ये हफ्ते में कम अज कम एक दो दफा लाजमी आना है। जी
17: बिल्कुल आजाद अल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आई डोंट नो आजाद अल, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी एक फ्रेंड है और शी इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रिसेंटली उसको मैंने जैसे नोटिस करी उसमें एक अजीब सी आदत आ गई है, वो कोई ऐसी बात करेगी कि लाइक शी शुडंट बी आस्किंग दोस थिंग्स दूसरे इंसान से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पूछती है कि वो हमारे एक्सप्रेशन देखे कि हमारे कैसे चेहरे बदल रहे हैं या आवाज बदलती है, एकदम लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, जैसे वो सवाल ऐसे करती है कि सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो हाउ डू यू हैंडल सच पीपल?
0: असल में ना दो किस्म के लोग होते हैं, ये जो जिस टाइप के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, फ्रेंड अच्छी हैं या स्वीट हैं या फ्लां हैं, स्वीट होना एक और चीज़ है, बहुत सारे वीक लोग बड़े स्वीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि वो जैसे हैं वैसे निकल आए सामने, वो खाम खा स्वीट भी होते हैं लोग, लेकिन ये जो क्रिएटिंग अ स्टर टाइप लोग होते हैं ना, कि आपके रिएक्शन सिर्फ उन्होंने नोट करने हैं, इनके दिमाग में कुछ चल, इनकी कोई दिमाग में गेम चल रही होती है, ठीक, या ये कहीं से सीख के आए होते हैं या इनके साथ कुछ हुआ होता है, इनको जो कुछ सामने होता है उस पर यकीन नहीं होता, तो ये मज़ीद लोगों को जज करने के लिए या चेकआउट करने के लिए इस किस्म का शोशा छोड़ देते हैं कि आपके आगे से रिएक्शंस क्या हैं। और दूसरी बात ये है, सम पीपल दे पहले वो जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, कुछ शुरू में जो जैसे होते हैं कुछ अर्सा तक होते हैं वो नहीं होते, असल उनकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलती है। बहुत सारे लोगों की डिवोर्सेज होती हैं, आप समझते हैं यार ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतनी अच्छी लेडी है, ये क्यों हुआ, लेकिन जब आप उनको जानते हैं कुछ अरसे के बाद आपको समझ आती है कि वो ऐसे दो तीन पॉइंट्स के ऊपर उनकी ज़ात का हिस्सा हैं जो वो बार बार वहाँ पर पिंच करते हैं, जिसकी वजह से कोई रिश्ता भी नहीं चल सकता।
18: ठीक है, लेकिन इसके लिए ये और क्योंकि हमको तो मतलब अच्छे बुरे की एक बहुत ब्रॉड किस्म का ब्रश है जिससे हम लोगों को पेंट कर देते हैं, और इतना हमें अकल समझ होती नहीं, ना हमने कभी थेरेपी में गए हैं, ना हम कोई चीज़ों को मानते हैं कि मैंने गलत किया या नहीं गलत किया, तो उनको बताया भी जाता है तो वो फिर आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो हमारी जान के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को नहीं भी चीज़ों को बताना चाहिए। बट ये जो लोग होते हैं इस किस्म की बातें करके, शुरू में जो ये होते हैं वो नहीं होते, बाद में जब ये ऐसी बातें करना, स्पेशली जो बातें लोगों की नहीं बनती पूछने की किसी से भी, वो उनको नहीं पूछनी चाहिए, वो चाहे वैसे भी जहालत में भी नहीं पूछनी चाहिए। पिछले दिनों कोई भी लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं और पूछते हैं जो जिससे उसका कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ आपको कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए पूछते हैं कि वो किस कंपार्टमेंट में आपको डाले, और या उन्होंने आपके बारे में जो भी सोच रखा है उसको फिगर आउट करने के लिए, वो कंफर्टेबल होने के लिए ये चीज़ें करते हैं। और जो लोग जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, ये कभी नहीं जाएगी, आपके बताने से भी नहीं जाएगी, उनको समझाने से भी नहीं जाएगी। ये कीड़ा जिसको होता है ना दूसरे की ज़ात में या दूसरे की ज़िंदगी में घुसना और चीज़ों को फिगर आउट करना, और फिर कुछ सवाल वो ऐसे करते हैं कि जिनके जवाब जो उनको मिलते हैं उस जवाब से वो अपने जहन में एक खाका बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और उस इमेज को वो पक्का कर लेते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं, उनका डर ख़त्म हो जाता है दूसरे बंदे से। सो ये इसलिए बहुत सारे लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों से कोशिश करके दूर रहा करें।
17: तो लेकिन वो इस तरह के करते हैं, लाइक आप बर्दाश्त करते हैं, बात भी टाल लेते हैं, वहां से उठ भी जाते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है व्हेन यू रिएक्ट, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो उसी को वो पकड़ लेते हैं फिर।
18: हाँ जी, वो रिएक्ट इसलिए करते हैं ना कि आप यू स्टिल इंटरेक्टिंग विद देम। मेरा नॉर्मली जैसे मैं अभी शुरू में हमारे घर में या बाहर में या दोस्तों में जब भी कोई ऐसी बात मुझसे पूछता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आपका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मसला नहीं। आप मैंने कभी आपसे ये बात पूछी है, आपको भी नहीं पूछनी चाहिए। और उस वक्त जो, और अगर कोई उसके बारे में कोई पॉइंट देने की कोशिश करेगा तो जो आवाज़ मेरी बनती है उससे मैं खुद ही डर जाता हूँ।
17: अच्छा,
18: क्योंकि हर इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि अगला इंसान जो है जो कर रहा है, मैं अपनी नेचर पर बहुत काम करके कुछ लोगों को बर्दाश्त करता हूँ, मैं अपनी नेचर पर बहुत काम करके सब्र करके बर्दाश्त करके और रब की खातिर और इस बात की खातिर कि ये भी इंसान है, हम सब इंसान हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब स्ट्रगल में हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी वही रोने धोने, वही परेशानियां, वही मसले होते हैं, तो आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम एज अ ह्यूमन बीइंग, विच इज़ वेरी ट्रू। कोई इसमें मुझे कोई मुबालगा या शर्म, वो बार बार वही नीच बातें, वही घटिया बातें, बार बार का रोना, विक्टिम सिंड्रोम, मेरे साथ ये हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ फैमिली ने ये किया, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मुझे ऐसे लोगों, मुझे पता होता है ये सिर्फ लोग धरती पे बोझ हैं और अब ये अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करेंगे, मुझे इससे तकलीफ़ नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, वो अपनी औलाद की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की और एक इन्वायरमेंट को परमानेंट गंदी मच्छी है वो ख़राब करेंगे, तो फिर उनके साथ मेरा बिहेवियर बेइंतहा सख्त हो जाता है। किसी की 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की भी सज़ा है। और किसी ने मुझसे कहा जी इस तरह की अगर कोई ये छोटी सी बात इस पर इंसान अगर फौत हो जाता है तो गिले शिकवे रह जाते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने उनको माफ़ किया, कोई गिले शिकवे नहीं है, वो आराम से मर सकते हैं, और मुझे भी आराम से अगर कोई नहीं आई तो मुझे कोई लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होगा कि मैंने कुछ कहा या नहीं कहा, कोई दिल में तो कुछ किसी के लिए बुरा है ही नहीं, आपने कुछ हरकतें की उसके हिसाब से मैंने आपका हिसाब कर दिया, ख़त्म होगी बात। आप जब वो नहीं करेंगे तो आपका जो उस हिसाब से आपका हिसाब कर देंगे, इसमें नाराज़गी क्या है, इसमें पर्सनल क्या लेना है किसी चीज़ को। और अगर मर गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह भला करे उनका भी, हम मर गए तो अल्लाह भला करे हमारा भी, हमने कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी बना रखी थी किसी के साथ।
17: तो अजादा जो आप सजाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कभी कभी लंबी में सजाएं देते, तो अजादा ये आप अपनी औलाद के साथ,
18: हाँ जी,
17: बहन भाई सब हाँ के साथ करते?
18: हाँ जी, मैं बाप के साथ भी, खान जी के साथ भी की मैंने, उनको पता होना चाहिए मैं कौन आदमी हूँ, मैं बचपन से वो मुझे जानते थे, 30-35 साल कि मेरी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी, उन्होंने किसी बंदे के कहने के ऊपर, एक छोटी सी बात के ऊपर कैसे कह दिया, एक बात उन्होंने की थी, उसके बाद उन्होंने 6 महीने 3 साल तक माफ़ियाँ मांगी सीधी सीधी, मैंने कहा नहीं मैं, और जब तक वो माफ़ी मांगते थे आगे से साथ गुस्सा शुरू कर देते थे मैंने कहा नहीं बिहेवियर ठीक नहीं है, रेक्टिफाई करें इस बिहेवियर को, मैं कहा आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं किसी गलती की, या आप मुझसे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ये डाडे हो रहे हैं, मैं ड्रामा बंद करें, नहीं खेलना मैंने ये खेल, आपको क्लियर कट बोले ये ऐसे सच था, मेरे गवाह हैं आपके पास, सब ने आपको बताया, आप फिर खाम खा इस किस्म की बात करें, और मुझे अपने मतलब तकलीफ हुई इस बात से कि आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह, फिर आपने क्यों कहा, और वो बहुत ही कुछ पैसों से रिलेटेड या किसी एक चीज़ के बारे में बात थी, तो मैंने कहा मैं आपको मैं जिस जगह पे रखता हूँ या जितनी मैं आपकी इज्जत और मुकाम मैं आपको देता हूँ, आप इस किस्म की बात करते हुए बहुत छोटे लगे हैं, मत करें इस किस्म की आइंदा बात। कोई बंदा तो हो ना जो 80 साल की उम्र का एक बंदा जो उससे बड़ा कोई भी नहीं है, और वो मैं देख रहा था आहिस्ता आहिस्ता वो गलत जो वो सही समझते थे वो गलत थे, लेकिन वो सही समझ के उस पर पक्के हुए जा रहे थे। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और मैंने उनके साथ इसलिए नहीं इस स्टैंड लिया था कि वो मेरे फादर हैं या मेरे से, बात फादर और बेटे की हो ही नहीं रही है, बात गलत और सही की हो रही है। फादर के हिसाब से तो वो जो मर्जी करें, उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने बड़ा किया, जो कुछ भी वो कहें सर आंखों पर, लेकिन एक बात गलत और सही को आप उसको सही कह रहे हैं और ऊपर से जोर लगा रहे हैं और ऊपर से डाडापन कर रहे हैं आपके, यू नो मैं सही हूँ, नहीं है आपसे, ये आपको भी पता है। और कुछ अर्से के बाद आपको पता भी फिर कन्फर्म भी हो गया, और उसके बाद आप उस चीज़ के लिए सॉरी भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपको पता है। और दूसरी बात, मैं कोई पर्सनल थोड़ी, इससे मैंने आपका बाप बेटे का रिश्ता या मोहब्बत या इज्जत या मुकाम तो आपका ख़त्म नहीं हुआ, ये एक अलहदा फाइट है। उस फाइट में एक बात हो रही है कि गलत और सही क्या है, इतनी सी बात है। उसमें बाप बेटे का हम लोगों को ना असल में क्योंकि समझ नहीं है ज़िंदगी में चीज़ों की, हमें स्टैंड लेना नहीं आता, हम जज्बाती होकर पर्सनल कहानियाँ और ड्रामे शुरू कर देते हैं बीच में कि आप मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें भाई किसने कहा है तुम कौन, मतलब इसका मतलब है गलत और सही में अगर मैं सही पे खड़ा हूँ तो मतलब आप मेरे साथ जस्ट बिकॉज मैं छोटा हूँ या जस्ट बिकॉज आपने पैदा किया तो आप सही हो गए, नहीं भाई। इसी तरह तो सिस्टम बदल बर्बाद होते हैं, इसी तरह तो गलत और सही का निज़ाम हमने बर्बाद किया है। तो उनको जब मैं बड़ा हो रहा था तो किसने उनको कुरान का तर्जुमा दिया, किसने उनको वो किताबें दी कि आप ये किताबें पढ़ें, किसने उनके साथ घंटों डिबेट्स की कि गलत और सही और रब कौन है और क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने ही तो उनका सारा कॉन्सेप्ट सीधा कराया, मैंने ही मौत उनसे मौत का डर उनके दिल से निकाला, उनसे मैंने मौत के बारे में डिस्कशंस की, कब्रिस्तान तक नहीं जाते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो मेरे साथ तो कम अज़ कम, और किसी और ने कुछ कहा और उसकी बात मान के उन्होंने ये कर दिया, वो फादर ना होते तो बड़ी लंबी इसकी सज़ाएँ थी, लाइफ टाइम भी हो सकता था। तो मतलब आप एक जानते चीज़ों को आप इस तरह नहीं कर सकते। तो और बहन भाई हों, माँ बाप हों, बच्चे हों, कोई भी हों, कॉन्स्टिट्यूशन है एक, ठीक है। देखें मुल्क हमारा क्यों बर्बाद हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बंदा नहीं मान रहा, हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। तो देखें द कंट्री इज गॉन टू द डॉग्स, डिड इट नॉट, बताया
17: बिल्कुल।
18: इसी तरह घर भी ऐसे ही बर्बाद होते हैं, बंदे भी ऐसे ही बर्बाद होते हैं। भाई एक बंदा, या तो आप इस किताब को मानते हैं कि नहीं मानते, या तो ये घर है, इस घर में कोई छोटा है बड़ा है, हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं अगर खुद भी अकाउंटेबल हूँ आपको भी अकाउंटेबल रखता हूँ। सारी सजाएं जो मैं गलत करूँ तो मैं अपने आप को देता हूँ, आपको मैं कैसे छोड़ दूंगा। तो जब आप, और इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी को कुछ कराने, ये सिस्टम बनाने की बात है। रब ने पूरी दुनिया कब से बनाई, कब से वो चल रही है, सिर्फ एक वजह से चल रही है, उसका कानून किसी के लिए नहीं बदलता। हम भी जब घर में एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसमें लोग अगर अकाउंटेबल नहीं होंगे उनको, तो वो अगर अपना कभी काम नहीं करें, जज्बाती ड्रामेबाजियां करके हर बंदा जिस काम के लिए आता है उसको छोड़ के बाकी सारी फजूलियात करने शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इन बातों की वजह से अगर आप किसी को सजाएं भी देते हैं उसका मतलब प्यार मोहब्बत नहीं खत्म हुआ, रिश्ता नहीं खत्म हुआ, उससे ताल्लुकात नहीं खत्म हुए, गलत है वो काम। और जब मैंने जो किसी भी बंदे को सजाएं दी हैं मेरे अपने जिन लोगों ने मुझे पाला बड़ा किया मैंने उनको भी दी, लेकिन जैसे ही वो सीधे हुए, इन्वायरमेंट उन्होंने कंड्यूसिव किया, प्यार मोहब्बत और अपने बच्चों को गलत बातें एक दूसरे के बारे में झूठ बताने के बजाय उन्होंने सच जब बताना शुरू किया तो वापस हो गया रिश्ते, नॉर्मल हो गए सारे के सारे। अकड़ से मैं काम नहीं करने दूंगा किसी को, ये बड़ा क्लियर है। बदमाशियां मैं किसी के नहीं मानता। आपने इसी तरह ज़िंदगी ख़राब होती है, इसी तरह आप बर्बाद होते हैं। आप अगर हमसे मोहब्बत फरमाते हैं तो वो आपका मसला है, मैं इज़्ज़त मोहब्बत काम करना हम भी बीच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बल्कि मैं अपने हिस्से से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। मुझे आपके इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें आप आराम से ज़िंदगी सुकून से जिएं। और मैं जिस घर में, जिस एनवायरनमेंट में और जिस जगह पे भी होता हूँ वहाँ हर बंदे को, मैं किसी के साथ भी हिसाब लगाने बैठ जाऊँ ना कि मुझे कितना करना था और मैंने कितना किया और आपने कितना करना था आपने कितना किया, हर बंदा फेल करा सकता हूँ मैं, हर बंदा। तो क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, हमें ना बहुत चीज़ें करनी है ना बहुत कुछ चाहिए, मुझे जो कुछ भी करना है सही तरीके से करना है ताकि मेरे बाद भी वो चल सके और मैं वो करते हुए सुकून की रात को नींद कर सकूं, मैं खाना खाते हुए मैं सुकून से खाना खा सकूं, मैंने जितनी मेहनत की है मैं उसके बदले अगर मुझे कुछ आराम चाहिए तो मैं आराम कर सकूं। मैं ऐसे लोगों के साथ उठूं बैठूं चलूं फिरूं जिनके साथ मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं जैसे कर रहा हूं उनको भी पता है, वो जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वो मुझे पता है, ना मैं किसी पे शक करता हूँ, ना शुबे करता हूँ, ना मुझे किसी से कोई गिला है, शिकवा है। कोई बात होती है, गलत करते हैं, मैं बता देता हूँ, कोई सही करते हो मैं उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ। मुझे इसी तरह की ज़िंदगी चाहिए, मैं क्योंकि डिज़र्व करता हूँ ऐसी ज़िंदगी, क्योंकि मैं लोगों को ऐसी ज़िंदगी देता हूँ। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं आता, मैं उनके पर्सनल रिश्तों में नहीं जाता, मैं उनके पर्सनल फाइनेंसेस में नहीं जाता, मैं कभी किसी के बैंक अकाउंट्स में नहीं जाता, मैं कभी किसी के ईमेल्स में नहीं जाता, मैं कभी किसी के फ़ोन्स में नहीं जाता। मेरे साथ जो आपका रिश्ता है, मैं सिर्फ उस रिश्ते से रिलेटेड, जो भी सुकून और खुशी अगर उसके अंदर नहीं है, मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी गंध है उसका नाम रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं जी, लोग जब जहाँ रिश्ते होते हैं, मोहब्बतें होती हैं, वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग, वो कमज़ोर लोग होते हैं जो ये बातें, वीक लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, बदतहजीबी भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, वो भी नाराज़गियाँ भी होते हैं। जहाँ असल में प्यार मोहब्बत के रिश्ते 25-30 साल से मेरे चल रहे हैं, मेरी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, ना उनकी, ना उन्होंने कभी लड़ाई की। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से सिला रहमी से वैसे ही गायब हो जाती है, तो वैसे ही लोग कहते रहते हैं। इसका मतलब है जहाँ लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी बदतहजीबी हो रही है, वहाँ रिश्ता है ही नहीं, आप सिर्फ लंबा उसको ड्रैग कर रहे हैं। झूठ बोलने से चीज़ें सच नहीं हो जाती, इतनी सी बात। क्लियर समझ आई बात?
17: बिल्कुल आ गई लाला।
18: अंदर से दूर से पठान तो नजर नहीं आया आपको?
17: जब आपने कहा ना कि मैं बदमाशियां नहीं मानता, उस वक्त मुझे
18: खत्म,
17: फुल ऑन,
18: किसी की भी, किसी का मतलब है किसी की भी। और मैं ना बहुत सारे लोगों से, मैंने कभी ना कभी अदालतों में गया हूँ, ना मैं केसेस करता हूँ लोगों पे, ना मुझे कि लोगों से लड़ना है, ना मुझे लोगों को रास्ते में मैंने कभी गुस्सा किया, ना मैं एयरपोर्टों पे गुस्सा करता हूँ, मैं ना नाराज़ होता हूँ किसी से ना कुछ और। लेकिन और मैंने पर्सनली कभी किसी का, पैसों की वजह से मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि अदालत में चलेंगे, मैंने कभी रिश्तों में किसी को नहीं कहा कि अदालत में चलेंगे, मैंने अपने ख़ानदान में कभी कोई चीज़ और किसी को कभी नहीं कहा, वो चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादती करोगे और उसके बाद आप बदमाशी करोगे, तो आप दुनिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी लेवल पे हो, फिर मैं एक दफ़ा खड़ा हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ये मेरा सिंपल तरीक़ेकार है, चाहे उसमें कुछ भी जाता है मेरा, कुछ भी का मतलब है ये जो जो भी चीज़ें जाती हैं, फिर वो जाने दूंगा मैं। इसलिए मैं ज़िंदगी में बहुत कम स्टैंड लेता हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत कम लड़ाई झगड़ों का हिस्सा बनता हूँ, मैं ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी मेरी ज़ाया करने के लिए है ही नहीं। बचपन में, जवानी में जो गलतियां इंसानों से होती हैं वो हो गई, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज़ में मैं जाकर पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादातर। ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी मसाइल लोगों के रहते हैं, नॉन प्रॉफिट्स में भी ऑर्गेनाइजेशंस में मसाइल रहते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, मुझे जैसे ही लगता है कि ये लोग इस तरह के हैं, मैं उनके साथ काम नहीं करता, मैं शुरू से ही अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ, ताकि वो दिन कभी आए ही ना। क्योंकि स्मार्ट बात ये होती है कि जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले से ही जीते हुए हैं अगर आप उस बंदे से लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो गई और आप ज़्यादती के ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, और उसके बाद आप आगे से बदतमीज़ी, बदतहजीबी और बदमाशी कर रहे हैं, तो फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा। चाहे मेरे साथ कोई आता है, नहीं आता है, लोग छोड़ के जाते हैं, मरते हैं, जीते हैं, जो कुछ भी हो जाए, फिर मैं किसी सूरत पर नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे अपनी नेचर के बारे में कुछ चीज़ें पता हैं, ये मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, नेचर मेरी ऐसी है। उसके लिए मैं एक दफ़ा खड़े हो गए तो जो भी नुकसान होता है फिर हो जाए, क्योंकि मुझे रब ने इतनी मेरे पे मेहरबानी की है, इतने मेरे पे कमाल लोगों के एहसानात हैं सारे के सारे, वो फिर कहीं ना कहीं मैं इस बात को

0: स्टेशन बैठ के वो जिन्होंने बेचना खरीदना सब कुछ करना था, सब के सब जाके उनके साथ मिल गए सिवाय एक बंदे के, और वो मैं था जिसने स्टैंड ले लिया था।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: When we wake up in the morning, we say, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Radio for the community, by the community.
10: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Haan ji, zindagi mein na, kyunki koi cheez 100% confirm nahi hoti hai. Jaise maslahat amez jab kehte hain na, jhoot शरंगेज सच से बेहतर होता है। यानी वो ट्रूथ जिससे आग लग जाए, जिससे रिश्ते टूट जाएं, जिससे कोई मसाइल पैदा हो जाएं, उसकी जगह वो मसले तामेज़ यानी वो डिप्लोमेटिक किस्म का बोला हुआ लाए जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे कम अज़ कम रिश्ते नहीं टूटेंगे और बहुत बड़ा कोई डिबैकल का जो ना वो रीज़न नहीं बन जाता। तो इंसान को खुदा ने अक्ल दी है, फहम दी है, और उसको डिसाइड करना, उस सिचुएशन के मुताबिक ट्वीक करना, ये उसको दिया है। और इसीलिए कहा है कि किसी आदमी अगर, तो वरना तो ट्रूथ है तो सच बोल दो, लेकिन रब ने, उसी रब ने आपको ये, उसके हो सकता है मसला आपसे कोई बात पूछे किसी के बारे में, कैरेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़, आप सच बोल दें, उनकी ज़िंदगी, रिश्ते, बच्चे, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए सारे का सारा, लेकिन वही रब आपसे कहता है कि दूसरों के ऐब छुपाओ। तो कोई चीज़ें ऐसे, वो ऐब जिससे कोई सिचुएशन डील हो सकती है या बेहतरी उसमें से निकाली जा सकती है या उसको चांस दिया जा सकता है, फर्स्ट स्टेप में आपने वो करना है। और अगर वो फिर बहुत सिचुएशन हद से बाहर निकल जाए और उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं या उससे कोई बड़ी यू नो सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो फिर आपने उसको इन द इंटरेस्ट ऑफ द यू नो जिसको प्रो बोनो पब्लिक को कहते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसमें अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो फिर वो और बात है। लेकिन कई सारे सच बताने के नहीं होते, तो अगर आप बताते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि जिनको आप बताते हैं उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो किसी को बंदा भी मार सकते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो आपने फिर ये समझना होगा कि आप किसको क्या कह रहे हैं। इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपका ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। असल में हम जागे हुए नहीं, हमें पता ही नहीं किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कौन सी बात किस सोच में करनी है। हम बेहोशी में बेहोशियाँ शाटा मारते रहते हैं, हम इधर उधर खाम खजे नहीं, वो जो हमारे टुल्ले क्रिकेटर्स नहीं होते, आके टुल्ले मारना शुरू कर देते हैं। बैट्समैन और होता है, टुल्ले मारने वाले और होते हैं, फिर जब पोजीशन आती है वो सब कुछ मार के 50-60 फीट बाहर निकल आते हैं। तो हमने लाइफ में ना, गांव में पता कहते थे बेगमी दिया शाटा मार दे, कि बेगम मतलब लगा हुआ, उसको पता ही नहीं कि आउट भी हो सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि यू नो क्या गेम चल रही है, हमने हारना भी है जीतना भी है, ये सोच समझ के खेलना है। तो हम बेगमी दिया शाटा मार रहे हैं बेसिकली। तो हम चाहते हैं कि बेगमी दिया शाटा में ही ना हम शादियां कर लें, हमारे बच्चे हो जाएं, हर चीज़ मतलब दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब वो सिर्फ हमारे लिए, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, ऐसे नहीं होता। एंड दे लिव्ड मिजरेबली आफ्टरवर्ड्स बिकॉज दे डिड नॉट यूज देयर हेड इन टाइम। और फिर कहने जी सर ये ऑन टाइम होता है, ये ऑन टाइम हो या इन टाइम हो, यू डिड नॉट यूज योर ब्रेन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
3: और कुछ एक और भी क्वेश्चन था लाला।
1: आजे, आजे, आज कोई नहीं है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग फिक्र ही ना करें।
3: अच्छा लाला, एक
1: यू है, किसी ने कहा यू हैड मी एट बेगमी दिया शाटा। हाँ जी
3: लाला, मैंने देखा है जो जो लोग अंडर अचीवर्स होते हैं, जैसे स्कूल में या बचपन में अंडर, वो बड़े होकर ज्यादा अच्छे रिस्क टेकर्स क्यों बन जाते हैं?
1: असल में ना जी, अंडर अचीवर का बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसानों को। एक तो ये अचीवमेंट के स्टैंडर्ड्स ही माठे हैं ना। मुझे तो कभी कोई आदमी अंडर अचीवर नहीं लगा मैंने ज़िंदगी में। ओवर अचीवर्स भी जो है ना, मुझे कभी उसमें भी कोई कमाल नज़र नहीं आया। ये मुझको डिसाइड करना है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। हो सकता है जो मेरे लिए अचीवमेंट हो, बहुत सारे लोगों के लिए वो अंडर अचीवमेंट हो। मैं जब से बड़ा हूँ, मुझे लोग 30 साल की उम्र से, मुझे 40 साल तक लोग कहते रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भाई मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। सो ये अचीवमेंट्स, अंडर अचीवर या ओवर अचीवर या यू एम्बिशियस होना, ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत सारे लोग मिजरेबल हैं کوئی چیز اچیو کرنے کے پیچھے, ان کی صحت چلے گی, ان کے رشتے چلے گئے, ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں, بٹ وہ ابھی بھی انہیں چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ڈپینڈ کرتا ہے یہ. اور دوسری بات ہے, جو انڈر اچیور ہوتے ہیں وہ بعد میں ظاہری بات ہے ان کو یہ کمپلیکس زور لگاتے ہیں, پھر وہ پھر اوور کمپنسیشن جیسے نہیں کی جاتی چیزوں کی, اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بلکہ میری اپنا, میں نے جو دیکھا تھا, جو لوگ بک وارمز ہوتے ہیں یا بکش ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں, اسکول کے زمانے میں بہت اچھے تھے, آگے زندگی میں ان کے بجائے جو میڈیوکرس تھے وہ بہت آگے گئے, اور جو بالکل ہی کوئی اس زمانے میں جو پڑھائی میں بہت ہی برے تھے, ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, ان کی وہی اچیومنٹ تھی جو اسکول کے زمانے میں تھی زیادہ تر لوگوں کی, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جو میڈیم تھے, درمیان میں جو لوگ تھے, انہوں نے بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں. یہ آبزرویشن ہے, ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. میں نے جو 2-4 ہزار لوگوں کو دیکھ کے آبزرویشن بنائی, کیونکہ ٹیسٹ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا, اسٹڈیز بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں, سیمپلنگ ہی کی جاتی ہے لوگوں میں اور اس کے اوپر ہی اسٹڈیز کر کے دیکھی جاتی ہیں. تو میں بھی زندگی میں جو دیکھتا ہوں اس کے حساب سے ہی, اب اتنی وہ لوگوں کی طرح کنٹرول انوائرمنٹ میں تو اسٹڈی نہیں کی جا سکتی, تو میں تو یہی شروع سے لے کے آخر تک جو دیکھتا ہوں, میرے مائنڈ میں وہ چیزیں رہتی ہیں, تو میں حساب لگاتا ہوں پھر سب کی لائف کا, ان کی ذہن کا, کیا تھے, کیا بنے, کیا کر رہے ہیں. پھر جب ملتا ہوں ابھی میں ان سے 10-20-30 سال کے بعد, تو اس سے بھی میں حساب لگاتا ہوں کہ ذہنی طور پہ انہوں نے ویسے تو چیزیں اچیو کر لی, لیکن ذہنی طور پہ بےچارے اللہ معاف کرے.
3: آپ کو نوسٹالجیا ہوتا ہے, آپ کو پرانا وقت یاد آتا ہے اپنا؟
1: نہیں, میرا نیا وقت, میرا یہ والا وقت اتنا اچھا ہے کہ مجھے پیچھے کوئی وقت یاد نہیں آتا, نہ مجھے لوگوں کی وردیاں یاد آتی ہیں, نہ مجھے کچھ اور یاد آتا ہے, مجھے صرف اپنے وہ یار, اپنے وہ دوست جو ہیں نا میرے, کبھی کبھی خان جی اور ماں کے ساتھ گزرا ہوا کچھ وقت جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کبھی کبھی کبھی, لیکن اس کے بعد جو میری ہوش کی زندگی میں میرے جو دوست اس دنیا میں نہیں ہیں, اور جن لوگوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں, وہ لوگ, ان لوگوں کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے, مجھے صرف وہ یاد آتا ہے, دیٹس آل. اور کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ وہ وقت دوبارہ آئے. میرا یہ ہے کہ وہ آگے لمبا, اس زمانے میں ہم ایسے تھے, اتنے خوش تھے, تو اب آگے کتنے کمال ہم کر رہے ہوتے اور خوش ہو رہے تھے, اور پھر یہ اس بات کی تسلی بھی رہتی ہے کہ آگے جا کے ملاقات بھی کرنی ہے ان لوگوں سے, تو اتنا کوئی خاص وہ مجھے نہیں آتا.
3: تو اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بہت نوسٹالجک فیل کرتے, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر ان کو دوبارہ اس ٹائم میں لے جایا جائے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟
1: اصل میں نا, بہت سارے لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں گے جب واپس جائیں گے, اگر یہ چیز ان کو واپس بھی دے دی جائے. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدل جاتی ہیں, انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں, ان کی خواہشات بدل جاتی ہیں, ہمارے ایموشنز بھی انسانوں کے لیے بدل جاتے ہیں. لیکن ہمیں نوسٹالجیا میں نا رہنے کا شوق بہت ہے کہ جی وہ پرانے وقت میں, یو نو, پرانے وقت, پرانی چیزیں, پرانی باتیں, جو, اور وہ زیادہ تر پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں, جن کا یہ وقت اچھا نہیں چل رہا ہوتا, جس کا یہ وقت اچھا چل رہا ہے نا, پریزنٹ میں جو رہ رہا ہے اور اس میں وہ کوئی کر رہا ہے کمال, اور وہ آگے فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آگے کتنا اچھا ہونے والا ہے, وہ پیچھے پاسٹ کو صرف یوز کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں غلط کہاں تھا, اور وہ غلطیاں مجھے پریزنٹ میں نہیں کرنی ہیں, اور مجھے اپنا فیوچر کو بہتر کرنا ہے. اسی لیے لوگ بار بار پیچھے جاتے ہیں. کئی لوگ آپ کو یاد ہے جس کو جی سچ محبتیں نہیں ملیں, جو کہتے ہیں کہ جی یہ میں شوہر بیوی میں بھی ہوتا ہے, محبوب میں بھی ہوتا ہے, محبت میں بھی لوگ ہوتے ہیں, جی فلاں والی محبت اچھی تھی, وہ اس لیے اچھی تھی کہ یہ والی اتنی اچھی نہیں ہے, اس میں آپ ذلیل ہو رہے ہیں, اس لیے آپ کو پچھلے بھائی یاد آ رہے ہیں یا بہن یاد آ رہی ہیں, اور اب آپ ایکچولی ان کے ماموں اور خالہ ہیں, بچوں پھوپھی ہیں. سچی باتیں ہیں یہ ساری, سب بتا کے جاؤں گا میں. میں نائکول کام کر رہی ہوں, آئی لو نائکول, صبح تک ٹھیک بھی گزارا کر بھی دیتی ہے اور نیند بھی ہو جاتی ہے, گلا بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے, اور بندے کا دماغ بھی نا تھوڑا ووزی سا ہوتا ہے. لیکن سچی بات بتانے کو نا, اب پتا ہے آپ کو سچ اتنا فنی ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سچ اتنا فنی ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ کس کوئی بولتا ہی نہیں ہے, جب کوئی بولو ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ جھوٹ, منافقت, ڈرامے, جو ہم سننا چاہتے ہیں, امبیلشمنٹس, کاروائیاں, یو نو, عجیب عجیب باتیں, یو کمپلیٹ می, اس قسم کی, بھائی آئی ایم ان کمپلیٹ مائی سیلف, ہاؤ دا ہیل کین یو کمپلیٹ می, یو ار این ایڈیٹ یور سیلف, ٹھیک ہے جی, یو ار این ایموشنل فول, این ایموشنل ریک, تو کیا مطلب یو کمپلیٹ می, تو بےچارا اپنا, تیرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں صحیح, تو یو نو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ یاد ہے وہ, میں وہ ایک لیڈی تھی, وہ کہتی تھی جی, تو اس کو جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا, اور بھائی آپ پاجامے کو ڈبلیو بنا کے خود بیچ میں سے باہر نکل جاتے ہیں, کپڑے آپ اٹھا کے جگہ پہ نہیں رکھ سکتے, کیا آپ سے محبت کرے کوئی, محبت آپ سے کرے کوئی.
3: عجیب آزاد اللہ, میں जब मैं काम करती आई यूज्ड टू वर्क इन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा पेशावर का, इट्स अ बिग वन. हाँ, तो वहाँ पे हमारे कॉलीग होते थे, उनकी डिवोर्स मेरे ख्याल से 26 years के बाद उनकी डिवोर्स हुई. और द रीजन ही वॉज गिविंग के मेरी बीवी से मुझे स्मेल आती है, तो व्हाट वाज ही डूइंग फॉर 26 years. वो सब उससे यही पूछ रहे थे कि 26 साल तुमने क्यों बर्दाश्त किया.
1: क्योंकि वो एक स्लो आदमी था ना पहले, वो ये शुरू से ही अगर वो ये कर लेते, और ये कोई चाहे वो हॉलीटोसिस की वाली स्मेल है या जिसी किस्म की भी है, इंसानों की बॉडी का डिफरेंट होता है, ये सारी चीज़ें फिक्सेबल हैं, ये कोई रीज़न नहीं है. और अगर उनको ये अब वो रीज़न उन्होंने ये उसको बताया, तो सारी बात है उनका दिमाग घास खा रहा था इतने अरसे से. ये बातें तो पहले 2-4-6 महीने की होती हैं, उसके बाद अगर ये सिचुएशन अगर रिपल्सिव, किसी इंसान का भी फिजिकली रिपल्सिव होना आपकी तरफ, वो शादी जायज़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जायज़ वो शादी. वो उसके लिए 26 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी. मेरा ख्याल है वो फरहाद की तरह शायद कुआं खोद रहा था दूध की नहर बिछाने, ही वॉज टू बिजी डूइंग ऑल दैट. हालांकि हुजूर पाक की बड़ी मैंने सुनत सुनाई भी है कि इन दफ़ा एक औरत थी, उन्होंने हुजूर पाक को आके कहा कि जी मेरा शौहर है, मेरा ख्याल भी रखता है, सिक्योरिटी भी देता है, मेरी फैमिली के साथ भी अच्छा है, प्रोवाइड भी करता है, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मुझे रिपल्सिव फीलिंग होती है. हुजूर पाक ने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा छोड़ो उसको, क्योंकि आप अपने नफ्स के साथ ज्यादती, दो बंदों के साथ, उसके साथ भी ज्यादती कर रही है, उसको पता भी नहीं है कि ये बात ऐसी, और दूसरी आप अपने नफ्स पर कोई भी चीज़ इस तरह भारी नहीं कर सकते. रब जो हमारा है ना, और जो पैगंबर है, उसने तो आपके लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं, हम खुद बदबख्त बीच में ये जो लोग हमने अजीब अजीब से रख लिए हैं ठेकेदार मज़हब के, और किताब हम खुद नहीं पढ़ते, और सुन्नत नबी हम खुद नहीं पढ़ते, उसवाए हसना जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीट ब्यूटीफुल लाइफ, तो वो जब हमने देखी नहीं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमने जहालत की ज़िंदगी में हम अज़ाब भी काटते रहते हैं इस किस्म के. हालाँकि दीज वर नेवर इवन अ प्रॉब्लम, नथिंग इज़ अ प्रॉब्लम. हमारे पैगंबर ने, हमारे रब ने हर चीज़ को इतना आसान कर दिया. वो चाहता है इंसान किसी चीज़ में एक्सेलेंस को पहुंचे, वो उसके लाइट को रिलैक्स रखना चाहता है, इसीलिए उसको बताता है ये करो ये ना करो, ये करोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो वैसे हो जाएगा. और अगर तुम चाहत को समझ जाओ, मेरी चाहत वो है जो तुम्हारे लिए बेहतरी है, उसको समझ जाओ और उसके हिसाब से तुम ऑपरेट करो, तो तुम 100 साल की ज़िंदगी में, 60 साल की ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हो. लेकिन हम यू टर्न लेके डिस्ट्रैक्शन में आके इसकी सुन ली उसकी सुन ली, और जब समझ भी गए तो फिर भी हम, क्योंकि उतना आदत हो जाती है हमें मिजरेबल रहने की आदत. तो किसी आदमी ने कहा ना कि जी ये गंजे क्यों हो गया, तो उसने कहा यार बस फिक्र बहुत करता था मैं. उसने कहा किस बात की फिक्र, कहता है बस बाल घिरने की फिक्र. तो उसने कहा कोई दवाई दारू कुछ और के, कहता है नहीं बस फिक्र से ही फारिग नहीं हुआ, तो बंदा फारिग हो गया. तो हमें कुछ पता ही नहीं है बेचारे, हम बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के जी, 200-400 साल से हमने कुछ नहीं किया. हमने इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, हमने फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने लोगों की इनेट एबिलिटीज़, उनके गिफ्ट्स के ऊपर बना के सिस्टम नहीं बनाए. ह्यूमन रिसोर्स में हम बर्बाद हैं. घर में हमने लोगों को प्रॉपर ये प्यार मोहब्बत और इश्क के ऑक्सीटोसिन और जज्बाती किस्म के वो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, उनके चक्कर में हमने गलत औलाद पे गलत किस्म का प्रेशर डाल के, उनको जो उनके गिफ्ट थे ही नहीं, उस किस्म के अपने कॉम्प्लेक्सेस उनमें डाल के, उनसे और काम करवा के, गलत टाइम पे गलत लोगों को बुलवा के, उनसे शादियां करवा के, उनके मथे मार के, ये जो हमने सोसाइटी बनाई है इसकी बहुत सख्त सज़ाएँ हैं रब के पास, बहुत सख्त सज़ाएँ. दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसकी फिर सज़ाएँ हैं. और हम कहते हैं जी हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, हमने कुछ भी नहीं किया. जब हमें पता लग गया कि क्या करना था क्या नहीं करना था, उस वक्त हम पे इतना बोझ पड़ चुका था. वो जो भाई साहब ने 26 साल बाद जो डिवोर्स दी ना, 26 साल की ज़िंदगी के बाद, अभी वो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, एक ज़िंदगी है, एक ख्वाहिशें हैं, कुछ मामलात हैं. वो अब कहीं पे भी जाएंगे तो वो इतना बड़ा ख्वाहिशात का बोझ उठा के लेके जाएंगे, और आगे फिर उनको वही मिलना. तो ये काम जो काम 6 महीने साल में करने और समझने का है, उसके लिए अगर आप 25-26 साल लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपने ज़िंदगी में तो बूथा ही बना के फिरने ना.
3: और लाला ये हम सब करते हैं, जैसे जो चीज़ जल्दी मैनेज हो सकती है उसको खींच के इतना लंबा कर देते हैं,
1: क्योंकि डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से, ये सारे बखेड़े. एक आदमी खुश, मेरी बेटी खुश ही नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ मर्द लोग सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, कौन सोसाइटी, कुत्ते बिल्ले सोसाइटी की, जिनको खुद नहीं पता कुछ, झूठ बेईमानी वो कार्रवाई अंदर से खोखले लोग वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी नहीं खुश, वो तकलीफ़ में है, वो परेशान है, बस ख़त्म होगी बात. लोग कौन है, वो खर्चा उठाते हैं उसका, उन्होंने तकलीफ़ उठा के उसको पैदा किया है, उन्होंने उस पर खर्चा करके उसके ऊपर काम किया है, लोग कौन, मैं तो लोगों के लोग मेरी बेटी थोड़ी है, मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरा बेटा खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, वो बंदा या बंदी उसको डिजर्व नहीं करते। वापस हुजूर पाक ने अपनी दोनों दो बेटियाँ थी, जब इस्लाम आया उन्होंने कहा अपने दो दामादों से उस वक्त जो थे कि आप इस्लाम में आए, उन्होंने कहा हम नहीं आते, उन्होंने कहा वापस आओ, दोनों बेटियाँ वापस ले लीं अपनी, ख़त्म। उनसे ज़्यादा इज्जत है हमारी, उनसे ज़्यादा लोग हम पे नज़र रखे बैठे, तो हम वीक है ना, हम हमारा कुछ भी नहीं है बेचारों का। और अगर आप ऐसे हों भी और आपकी बेगम ऐसी ना हो तो फिर एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ दो बंदे एक मकसद, कुछ भी हो जाए एक मकसद, जब तक ये नहीं है वो एनवायरमेंट में पावर मर्द के अंदर और औरत के अंदर आ ही नहीं सकती, उस फैमिली के अंदर मॉरल करेज आ ही नहीं सकती, ये सब चीज़ें मिल कर आती हैं, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले आप वो बंदा बने, फिर देखें कि दुनिया आपसे कितनी इज्जत मोहब्बतें करती है, पहले आप वो इंसान वो औरत बने जिसके लिए कैसे कैसे कदरों में लोगों ने हम तख्त ताज छोड़ देते हैं, वो कोई लोग होते हैं, हम लोग लोग नहीं है, हम लोग हम लोग हैं, हम लोग समझती हैं आप।
3: हाँ जी,
1: दो किस्म के हम लोग होते हैं। चलें आज आपको हम लोग, एक काले रंग का छोटा सा होता है जिसमें बहुत सारी वो, उसको कहते हैं गाँव में होता था,
3: हाँ जी,
1: गरीबों का फल जो होता था छोटी छोटी काली काली, वो हम लोग कहते थे। और एक हम लोग पता है हम किसको कहते हैं,
3: वो बड़ा ऑरेंज वाला,
1: हाँ पर्सिमन मेरा ख्याल उसको कहते हैं शायद,
3: हाँ जी, हाँ। जो यहाँ $5 का एक मिलता है,
1: हाँ मैं उसको मिक्स कर जाता हूँ पार्मेजान के साथ।
3: अच्छा।
1: हर दफा आगे पीछे हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि दोनों मिलते जुलते ही है ना, आगे पीछे आर को आगे पीछे करने। उनके दिमाग में होता है ये, और कुछ होती है नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, फलां चाहते हैं, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट इट। ये वही वाली बात है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं रोज आपको मिलके बताता हूँ सजीला जी मेरे घुटने में दर्द नहीं है। अरे भाई वो ठीक चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ, जब तक मैं लंगड़ा नहीं रहा दुख नहीं हो रहा। तो लोग मैंने देखा वही बातें रिपीट करते रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, फलां तो ऐसे हैं, ये तो अच्छा, आप तो ये हैं, हम तो ये हैं, बट किसने ये बातें तो हो चुकी, कोई डम है जिसको एक बंदे को बार बार बताओगे आप, आपका दिमाग स्लो चलता है तो आप समझते हैं बाकी दुनिया भी स्लो चलती है, इस तरह थोड़ी होता है। तो जो जो भी लोग बार बार चीज़ें करते हैं ना, वो उनका वो चाहते हैं, और अगर फिर कोई और एक और बात भी बताऊं, आप कुछ चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर आप ऑपरेट नहीं करते या प्लान नहीं करते, तो फिर वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती, इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं, ये आपका काम है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, क्या आपको खाना पसंद होता है, आप निहारी बनाना चाहते हैं, आप खा आप जाके बनाते हैं, तो खुदा आपको रोकता है निहारी खाने से, रोक सकता है नहीं, वो आप खाना चाहते हैं आप जाओ बनाओ खाओ, आप उसमें अल्लाह को हम खुद ले आते हैं बीच में कि मैं मतलब मुझे रोक ले खाना खाने से, क्यों रोके वो आपको, ये तो आपके अपने दिमाग के कीड़े। वो अगर रोकना चाहता है तो फिर शदाद ने जन्नत बना ली थी, उसको पैर उसने नहीं रखने दिया जन्नत में अपनी बनाई हुई, तो नहीं रखने दिया उसने, तो लेकिन उसने तो अपनी पूरी कोशिश की, उसने तो पूरी जन्नत बना दी थी, ख़त्म, आप तो बनाओ ना पहले। वो लोग कहते हैं शदाद बड़ा बुरा आदमी, तो शदाद जितना काम तो करके दिखाओ, जन्नत उसने ऐसी बनाई उसको उठा लिया, इतनी आला बनाई उसने, ही वाज अ क्रिएटिव मैन, उसने ही एटलीस्ट ही डिड व्हाट ही वाज वांटिंग टू डू, हम में से तो किसी ने वो काम भी नहीं किया, कुछ तो बनाओ। यहाँ तो हम एक थोड़ा सा रिश्ता नहीं बना सके, एक दोस्त नहीं है हमारा, एक गम गुसार नहीं है हमारा, एक हमारा बंदा नहीं जिसको हम राज की बात बता सकें, किसी से हम कुछ शेयर, हर एक से हम डरे हुए हैं, क्या औकात है हमारी। देखें सच में हमारी कोई औकात औकात नहीं होती बेचारे, हम बहुत माठे, बस ऐसे जैसे समझें कि यू नो जरकान हुआ हुआ है हमें, पीली आंखें पीली बूथी के साथ भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आपसे कोई सलाम दुआ ना रखे मोहब्बत कैसे करे आपसे कोई। अरे आप इंसान के पुत्र बने पहले, आप करेंगे मोहब्बतें आपसे,
3: ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है आपने कोई स्पेशल दवाई ली है।
1: तो नहीं, आपकी वजह आप और हीरा सिंह के आने की वजह से हुआ है, मेरे से तो, मेरे तो बचपन में भी कभी नहीं कहा मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी तो जान ही छुड़ाना मुश्किल हो गई है लोगों से, बचपन से ही मेरी जान नहीं छोड़ रहे, मेरी तो खलाएं मुझको नहीं छोड़ती थी चिमट चिमट के मुझको, मैं कहता खरे परे हो जाओ दांत साफ करके आओ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, मुझे तो जान जो होता था मैं जान कैसे छुड़ाऊंगा इनसे। आपको पता है पठानों के कल्चर में ना वी आर नॉट वेरी फिजिकल, लेकिन हमारे साथ सब कुछ बेचारे बचपन से ही रिश्तेदार सारे बहुत फिजिकल प्यार मोहब्बत में थे, तो मैं कहता था यार मैंने दूर हटना है इन लोगों से, ये स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं हमारे।
3: बस वज़ादल आप इतने प्यारे लगते हैं सबको, वो मेरा ख्याल से यही वजह,
1: और इंसान हो और किसी को किसी एक बंदे को तो लगे ना, सबको तो कोई भी नहीं कह रहा, सब लोग तो ऐसे अजाब बन जाते हैं जान का, लेकिन इंसान तो प्यारी चीज़ है ना।
3: इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
1: हाँ जी,
3: कि वो सबको,
1: हाँ
3: जी, अच्छा लगा।
1: ये याद रखिएगा जिंदगी में जिस इंसान को भी प्यार मिल रहा है ना, ये रब की मेहरबानी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जब आपसे जिंदगी में कहता है ना हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या हम आपके लिए आपको बहुत इज्जत करते हैं, या हम आप फलां करते हैं, इसका मतलब है
4: वो दूसरा बंदा जो आपसे मोहब्बत कर रहा है वो कोई कमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है उसका, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, या आपकी ज़ात की कोई चीज़ हिस्सा है या आपने उस पर काम किया है अपने ऊपर, और उस वजह से आपको इतनी इतने प्यार मोहब्बतें मिल रहे हैं इंसानों को। ये जिस इंसान को समझ आ जाए, आप वो बटन प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हर आदमी को प्यार मिल सकता है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि जी आपको प्यार नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो वो करने की वजह से आपको हर कोई प्यार करेगा, बेख्तियार हो जाएंगे, ठीक है। आपने पिछले सारे आपके गले शिकवे माफ हुए, जाइए आज हम फिर आपसे खुश हैं, ठीक है। सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आजादी ऑन द एयर।
5: हेलो आजाद
4: जी। जी हेलो मैम।
5: बस अभी हाय हेलो कहने के लिए इतना ही टाइम बचा है,
4: फिर भी हम आपकी बात सुन सकते हैं।
5: आई हैड कपल ऑफ पॉइंट्स। वो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई थे ना, उनका कॉल मैं सुन रही थी, फिर मुझे कॉल आ गया।
4: सो
5: आई वाज आई कुडंट कॉल यू बैक, बट एनीवे, सो यू नो कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर नोटिसिंग अबाउट योरसेल्फ कि यू गेट एंग्री और ये सब, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द होल बंच। बिकॉज सम पीपल दे डोंट इवन नोटिस दीज थिंग्स दैट दे that happened to them. So these days, you know, in my spiritual journey also, they always say, hey, if you're noticing these things, then it's already, you are one step ahead. Secondly, kehte hain ki you should never feel guilty about anything. Mm-hmm. Because jo ho gaya, wo ho gaya. I mean, there's nothing you cannot undo that. And it hinders your progress. आपका जो प्रोग्रेस होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा हिंडरेंस आ जाता है, बिकॉज यू आर कभी ये भी होता है ना कि यू आर नॉट एबल टू प्रे, जैसे आपको कहा गया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे इतना टाइम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू देन इट्स ओके, यू शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज इट विल हिंडर, इट बी इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड इट विल कीप हिंडरिंग यू। तो इससे अच्छा ये है कि ठीक है नहीं हो सका मेरे से, एंड आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, आई हैड ऑल दीज अदर कमिटमेंट्स, ओके आई कैन डू इट टुडे। तो आपने भी यही बोला था, बट दिस इज अ स्लाइटली न्यूएंस्ड पॉइंट कि वो आपके बैक ऑफ योर माइंड में जाके वो स्टक हो जाता है, एंड देन आप करने भी बैठोगे वो काम या जो भी करना होता है, तो आपके माइंड में ये आ जाएगा, अरे मैंने इतने दिन नहीं किया था ये, और यू नो आई एम बिहाइंड, मैं आई फेल बिहाइंड ऑन दिस, सो एंड देन इट बॉदर यू। तो एक बार आपने सोचा कि ठीक है हो गया, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड से कि ओके इट वाज अ मिस्टेक, अब यू नो आई डू द बेस्ट आई कैन, दैट्स व्हाई इन ऑल द रिलीजंस दे से यू शुड डू द बेस्ट यू कैन। अभी आपका बेस्ट यही है एट दिस पॉइंट, गिवन योर सिचुएशन, गिवन एवरीथिंग एल्स।
4: वेरी वैलिड पॉइंट, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और वक्त समाप्त होता है ओमेगा जी, बाकी पॉइंट्स के लिए इंशाल्लाह आती रहेगा, अपना जरूर पॉइंट दीजिएगा। आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही कमाल और वैलिड था, इसके ऊपर जी ज़रूर आपने सोचना है और अपना पॉइंट देना है। और आज का ये शो यहीं पर ख़त्म होता है, अगले शो में मी टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मी टाइम कोई सेल्फिश पॉइंट या उस चीज़ के लिए नहीं है, मैं अपना मी टाइम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मी टाइम है क्या, क्यों आपने करना है डेली लाइफ अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए, और कैसे सेल्फ केयर भी आपकी होती है और ये बाकियों के लिए भी बेहतर है, और इसके बारे में हम बात करेंगे वेंसडे का शो। ये मी टाइम का पार्ट टू होगा, पिछले शो में आप लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते रहिएगा। आज बहुत अच्छे नई आपको मेहरबान आवाज़ें और मेहरबान लोग आए, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390। और अब वक्त तो हो गया, लेकिन चलिए दूर से कॉल है, कर ले लेते हैं। रेडियो आजादी रौंदी है।
6: हेलो जी, सत श्री अकाल
4: जी। वाधवा जी, देखें आपकी कॉल हम नहीं मिस करते, चाहे वक्त ना भी हो तो। हुक्म।
6: थैंक यू सो मच। मैं क्या बुलंद हो गई आवाज आके प्रोग्राम देना शुरू किया थे।
4: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
6: एंड डॉक्टर शकीला शी सच ए स्वीट पर्सन, मैं मिली तो नहीं पर मैं जिस सुनिया मेरा दिल करता तो मैं हक करा।
4: इंशाल्लाह मैं आप वाला हक हम जरूर करेंगे।
6: ठीक है
4: जरूर इंशाल्लाह, ये मौका लगेगा हम हक पहुंचा देंगे आपको।
6: देखो ऊपर वाले ने चाहा थे,
4: पुराने जमाने में ना जिस तरह गायबाना नमाज जनाजा होता सी, और ऐसी गायबाना हक भी देना शुरू करेंगे बाबा जी। तुसी ना अगले शो च आना, मैं तेनू ऑनियर भी लेना, तुसी कुछ सुनाना।
6: मैं हाजिरी भर लवां क्योंकि काफी कॉल्स आ रही सी, और बढ़िया हीरा सिंह ने भी बड़े अच्छे सवाल किए, बच्ची ने भी बड़ा, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर
4: देने। देखो ना सरदार छाए पे ने। ٹھیک ہے
6: اگلے شو میں صرف اپنی حاضری پا دوں.
4: سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ بادوا جی, آل دا وے فرام کینیڈا, چھتر چھایا میں جی آپ کے پیار اور دعاؤں میں, آپ کی رداسوں میں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹائم ٹو سائن آف, اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے دو تین شعر آپ کی نظر کر دیتے ہیں, چلیے موقع بھی ہے دستور بھی, اور اس کے بعد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اپنا اپنا کنٹریبیوشن دینے کا بہت بہت شکریہ, اس شو کو شو بنانے کا 100 دفعہ شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है को एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहे हैं। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी दे के बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, पांच वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे, बोलना है बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे ग़ुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ग़ुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूँ जी आपके ग़ुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नज़र फौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो दो तीन दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूं क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ, और घूम फिर रहा हूँ, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज़्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं तीसरी जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा होके ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चो ओपन अप पेज 5। क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यहां टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हां लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया। तो जब कहा ना अर रहमान अर रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किस किस अल्फाज, किन अल्फाज से, अर रहमान अर रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर रहमान अर रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर रहमान के अंदर और दो होती हैं अर रहीम के अंदर। छुट्टी है ना अर रहमान अर रहीम में, तो फिर बिगाड़ का सारा सामान इन दो अल्फाज में, जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है। तो फौरन अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे। कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है। इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब अजीब सूरत है अल्लाह ताला की। इसके बारे में मैं जितना काम कम है आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं, और रहमान और रहीम। अब उन दोनों लफ्ज के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी है और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था, الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا، رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں، اور اس سے قریب تین ترین لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس کس زندگی کے بارے میں، اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم، جو ہمیشہ والی رحمت، اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے، کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا، شروع ربوبیت سے رب، انتہا مالک سے، اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا، یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے، لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر باہر اتھارٹی ہے اور اندر اندر محبت ہے. رب، مالک، رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب جلدی سے ان تین آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بہت آسان ہے سمجھنا. دین سے شروع بات کرتے ہیں. دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو، فیصلے کو. دین عربی میں آلسو اس کو بھی کہتے ہیں کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہونا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے. میرا معاملہ طے ہو گیا، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. کما تدین تو دان، جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا، اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت، عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا. اور دین کیا ہے؟ انصاف، فیصلہ. اور فیصلے سے کیا، کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹو ہے، مثبت ہے، اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے، تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عظیم رحمت ہے، اس نے نفرت کا، عذاب کا، غصے کا ذکر بھی نہیں کیا، منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز و انتقام ہوتا، المعذب کچھ ہوتا، لیکن وہاں بھی صفر تک لے کے منفی تک نہیں لے کے گئے، صرف دین کی بات کی، یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیوں کی؟ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا وہ عذاب نہیں ہے. فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. انہ من سئل یوم القیامت فقد ہلک. ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا، جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں، گزرنے دیں گے، جی ہمیں بتائیں آپ جائیں. کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے، وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو، یہ والا یہ چیک کر لیں ذرا، یہ والا. اچھا، یہ اگر پیج 503 پہ جائیں تو وہاں ایک شاید ایک للۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک، تو آپ، لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جاؤ، آپ کی خیال ہے، نکلو، کوئی بات نہیں. عجیب ہے صاحب. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है। जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा? मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल लिया गया? तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम मायने थे ना, वो सारे निकल गए और क्या रह गया? मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहा? मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, ओके, दो चीजें। यौम, यौम किसे कहते हैं? ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज है जो आप जो भी कर, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है? वक्त। और वहां उसने उस एक चीज की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूं कि ये यहां पर एक थैला हो और मैं कहूं ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है? मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली? उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात एक ही मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिक यौम, मालिक यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझते हैं। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे। मालिक और क्या? मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है। मालिक गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताए? बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहां जरूरी हैं। समझ ले क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं इस जूते का बादशाह हूं। मैं क्या कहूंगा? मैं जूते का मालिक हूं। मैं घर का बादशाह हूं या मालिक हूं? मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूँ, मालिक हूँ? मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूँ, क्या बात सामने आ रही है? बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है? बादशाह। अब एक और फ़र्क भी समझ लें, अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीजें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसका उसका उसकी नजर है? हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है? आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है। ऐसा ही है ना, आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आ गए, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है, अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ उसे दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता भी दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या, मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं, क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है, क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है, क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है, क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा दिया जा रहा है कि नहीं? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुतालिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुतालिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिकियों में दीन में। आपके जाने से पहले हमने तीन आयात का मुताला किया है इस वक्त थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौम अद्दीन। मेरे नज़दीक क़ुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ़, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस ये तीन आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौम अद्दीन। पहली चीज़ जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है, उसका नाम अल्लाह है, उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज़ का, तमाम इंसानियत का, अज़ल से अब तक, अलआलमीन। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा मालिक यौम अद्दीन। एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई, जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूँ, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे। दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया, ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। और इसके बाद जहां से हम कल बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो होगी कि अगर ये कोई बात सुन ले तो वो किस नतीजे पे पहुंचेगा, यानी इस सारी बात का। ठीक है, आपने ये बातें सीख ली अल्लाह के बारे में, सो व्हाट, फिर क्या, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन तीन आयत का नतीजा है, कि जो इन तीन बातों को, इन तीन आयत को समझ ले वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और ख़ुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया, कहा इयाका नअबुदु, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं, यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पर कल मुलाकात होगी।
1: Subscribe now to the Bagina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
0: जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया। वादे क्या कर रहा था, इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा, क्या चाहिए तुम्हें?
2: Coming up next, than a shit show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Build your stamina early. Walk daily in your Hajj shoes to prevent blisters. Prepare for long, hot miles so fatigue doesn't harm your patience. Strengthen your body to support your soul's journey. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
4: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense."

सैयद, मुनाइम, मुरबी, कय्यम। अच्छा, पांच में से ना इसको हम थोड़ी तकसीम कर देते हैं। इनमें से दो का ताल्लुक अथॉरिटी के साथ है, बाकी तीन का ताल्लुक रहमत के साथ है। पांच महीने हैं लेकिन दो का ताल्लुक किसके साथ है? अथॉरिटी के साथ, इक्तदार के साथ। वो दो कौन से हैं, आप खुद गेस करो। मालिक और सईद का ताल्लुक इक्तदार के साथ है, लेकिन जिसने ख्याल रखना है, जिसने तोहफा देना है, जिसने नशोनुमा करनी है, मुरबी, मुनइम, कय्यम, उसका ताल्लुक किसके साथ है? रहमत के साथ। बात समझ में आ गई? ओके। अब आगे जाकर मालिक का लफ्ज आया था, मालिक यौमिद्दीन, और मालिक की दो किराआत थी, याद है आपको, मालिक और मलिक। उसमें से एक मालिक तो वैसे भी रब के साथ था, और मलिक अथॉरिटी के या जो सैयद के करीब है, मलिक और सैयद। समझ रहे बात? यानी रब में पांच मायने हैं लेकिन उसमें से दो मायने मालिक और मलिक में भी हैं, लेकिन तीन मिसिंग है। ये बात समझ आ रही है? कौन से तीन मिसिंग है जो रब में है, जो मालिक में और मलिक में नहीं है? मुनइम, मुरबी, कय्यम। तो वो तीन मिसिंग क्यों हैं? सवाल पैदा होता है कि यहां तीन मजीद क्यों हैं और वहां तीन कम क्यों हैं? वहां बात हो रही है इंसाफ की। किस दिन का मालिक है? मालिकी यौमिद्दीन। यहां बात हो रही है तमाम आलमीन की, रब अल आलमीन। वो आखिरत की बात है, आखिरत के कोर्ट वाले दिन की बात है, और यहां पर दुनिया की बात है। दुनिया में अल्लाह ताला का इक्तदार भी है लेकिन वो हर वक्त जाहिर नहीं करता। अल्लाह ताला की मिल्कियत भी है, हर वक्त जाहिर नहीं करता। मुझे इंप्रेशन मिलता है मेरा भी कोई कंट्रोल है, मेरे मुंह में जो बात आए मैं कह सकता हूं, वो रोकता नहीं है। रोक सकता है? रोकता नहीं है। मैं जो देखना चाहूं देख सकता हूं, वो मेरी आंखों को बंद नहीं करता। है तो वो मालिक है सैयद, लेकिन उसको वो एक्सरसाइज करने से मुझे नजर नहीं आता कि वो उसको मुझे कंट्रोल कर रहा है। और वो क्यों नहीं कर रहा? फौरन पकड़ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुनइम, मुरबी, कय्यम, अर्रहमान, उन सारी चीज़ों की वजह से मुझे थोड़ी सी आज़ादी दी हुई है। क़यामत के दिन क्या होना है? ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़्ज़िना लर्रहमान व क़ाल सवाबा। उस दिन तो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। मुहतीन और रुऊसिहिम, यहाँ तक कि मुजरमों के बारे में, अल्लाह हमें मुजरमों से मिसे ना बनाए। सूरतुल कमर में बताया है कि वो उनको पुकारा जाएगा एक ऐसी चीज़ की तरफ जो बहुत डरावनी होगी। इला शैइन नुकुर, यौम यदउद्दाई इला शैइन नुकुर, ऐसी चीज़ की तरफ बुलाया जा रहा है जो बहुत डरावनी है। अच्छा, जगह अगर मैं कहीं आग देखूँ और वो करीब है, कोई जानवर देखे, कोई इंसान देखे, किस तरफ भागेगा? अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कानून और पूरी पूरी सोसाइटीज़ होने के बावजूद वो उनका मुरब्बी और उनका मुनइम और उनका कय्यम। अच्छा, सोसाइटी का जो लॉ होता है ना, उसके लिए भी कुरान में एक लफ्ज़ है, पूरी एक जो उसका आईन होता है उसके लिए लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल करता है दीन। जैसे सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रखा एक साजिश के तहत, यानी उन पर इल्ज़ाम लगाया कि कब उनके बैग में से निकला, उनके बस्ते में से निकला, तो कहा, अल्लाह ताला ने खुद ही बताया ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसलिए किया, मा काना अन याखुदा अखाहु फी दीन अल मलिक, उनके लिए मुमकिन नहीं था अपने बादशाह के कानून के तहत कि वो ऐसे ही अपने भाई को रख लेते। अरेस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो जो बादशाह का कानून था ना, उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सूरह यूसुफ में? दीन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब आलमीन की बात की गई है ना, तो तमाम आलम, तमाम सोसाइटीज, तमाम सिविलाइजेशंस, उन तमाम के दीन अलग अलग थे, उनके कानून अलग अलग थे, लेकिन अल्लाह फिर भी उनका रब रहा, फिर भी उन पर निमतें करता रहा। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो, आप किसी भी कानून से आए हो, किसी भी आइन से आए हो, एक दिन सबको एक ही कानून के तहत जज किया जाना है। वो क्या है? मालिक यौमी अद्दीन। अब सख्ती हो गई। जब सख्ती हो गई तो नरमी वाले तीन मायने निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर रब और वहां पर मालिक की बात समझ में आ गई। तो ये चीज ये